संतां के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम। संतां के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम। जदों संगत च आपां बैठदे आ तुहानूं संत कहिंदे, जिहड़े फिर उहदा नाम जपदे आ उहनां दे लोक दे काम वी ते परलोक दे वी दोवें सवारदा वाहिगुरू। ये लोक सुखी है परलोक सहले, पर किन्हां दे जन लागा हरेके नाए, ये शर्त आ। गुरबाणी गुरु जी कंडीशनल ने, कंडीशनल कंडीशनल हुंदा भी इदां करोगे तो इदां हो जाएगा। बाणी गुरु हुण ध्यान नाल सुननी गल, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत, सारे गुर बाणी कहे। आपां सारे सेवक हैं, सेवक जन माने, प्रतख प्रतख तुहाडे सारे कार्ज करूगा वाहिगुरु, प्रतख करदा वा। आपां उन्ना चिर कोई काम नहीं करदे जिन्ना चिर सानू फायदा नहीं हुंदा। कई पुछ लेंदे जी ये वाहिगुरु जपण नाल की होएगा, ते पंजवें पातशाह दे बचन ने हर राम राम राम राम, हर वाहिगुरु नूं कहा राम राम राम राम, जप पूर्ण होए काम। सतगुरु वेखो यह रहाओ वाली पंक्ति है गौड़ी माझ राग दे विच, भी सानू पता लगे भी आ वाहगुरु का नाम जपदे पए हाँ, इन होएगा की कि राम गोबिंद जपेंद्या होआ मुख पवित्र, क्यों वाहगुरु पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपत नानक मन। देखो जप जेड़ा ना सारा एक ओंकार तो लैके, जप तो ही बाणी शुरू की सतगुरु ने, जप ते ही जाके खत्म कर दे, ये करना ही पैना वा। राम गोबिंद जपेंद्या हुआ मुख पवित्र। हुण जिहड़े पुछदे गुरमुख प्यारे कि ये तुसी बोली तो जांदे हो इहदे नाल फायदा की होएगा, कई बहुते पढ़े लिखे जे वो इस गल नूं मनदे नहीं, है ना। तो सतगुरु पंजवें पातशाह कहिंदे बारंग बार बार प्रभ जपी, बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत ए, इत वाहगुरु कहण वाली मुख च अमृत आ जाता। तुम वेख लिया होना जिहड़े जपदे, मुख मिठा होना शुरू हो जाता वा। वह कार्ज लई जिहनू सानू आरंभ जिहदे लई आए असी, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलण की, ये जिहड़ा तुसी काम कर रहे हो तुसी समझ लो आरंभ काज रचा दिता वा। तो फिर सतगुरु ने कार्य पूरा कर देना, इस लोक का भी परलोक का भी, जिन्हों कहते सतगुर गुर पूरा आराधो। वाहगुरु ने कहा वाह, आराधना का बड़े ध्यान नाल जपना ते सुनना। सब किलविख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर, ये मिठा लगन लग पैना, पहला नहीं लगता, जो शुरू करते हैं ना थक जाते हैं, पर जो लग पाओ ना फिर रस आना शुरू हो जाता। एक गुरमुख प्यारे बाबा मस्कीन जी कहते होंगे, कहते जी पहली पौड़ी है ना जपजी साहब की, वह कहते अलूनी सेल चट्टन वाली गल आ। अलूनी सेल, एक सेल होंगी है ना, सेल कहते पत्थर नू, जे लून वाली हो चट लाँगे आप, जे पत्थर नू चट्टोगे तो छिली जाती है। पहली पौड़ी कमाउणी जिहड़ी है ना बड़ी औखी है, तो जिहड़ा एक पहली पौड़ी चढ़ गया ना सारियां पौड़ियां चढ़ जूगा। ए तरह पत पवड़ियां चढ़िए होए अकीस, ये पहला पहला जदों लगते हैं ना आपां, तो अपनी आदत हुंदी है गल्लां करन दी, गुरु घर आके भी करी जांदे बाहर भी, है ना, वो सानू आदत जांदी नहीं गी।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਉਚਰ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਨੀਗੇ, ਉਚਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਓਰ, ਉਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਚਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਗੇ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਖਣ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁੱਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਮ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਦਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸੋਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੱਦ ਬਲਹਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਬਣਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸ਼ੋ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख

ताहीं हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियाहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं

त्रह सहस पनिजै अर्ध सहस हुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रोपखयाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा।

बड़ा गजब का ख्याल पेश कर रहे हैं। उन्होंने विचार दिखी कि संसार जड़ी पूजा हो रही है परमात्मा की पूजा, वैसे तो पूजा कहते किलो ने सारी दुनिया ही रब की पूजा च लगी हुई है। धन गुरु नानक के सच्चे पातशाह जी कहते ने पूजा की चै नाम त्याई है, बिन नाम है पूज ना हो, के नाम तो बिना दूसरी पूजा जड़ी है वो कोई पूजा नहीं, कर्म कांड हो सकता है, कवायत हो सकती है और बहुते तौर पर पखंड होता है और पखंड में ही लोग पूजा समझ लेते हैं और ये नाल बहुत सारी हिंसा जड़ी है वो संसार में हुई। भगत कबीर साहब कहते ने यह जो दरख्त ने फुल बूटे ने जो नेचर है, क्योंकि परमात्मा का वसेबा जड़ा उसकी कुदरत दे विच होता है। जे किसी ने पूछना कि रब रहिंदा कित्थे, श्री आसा की वार दे विच धन गुरु नानक देव महाराज कहते ने रब का एड्रेस है कि बलहारी कुदरत वसिया, वो अपनी कुदरत दे विच विद्यमान है, विराजमान है, कुदरत करके वसिया सोए, आप ही ने आप साजो, आप ही ने रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। बड़ा प्रसन्न है इस कुदरत दे विच, ये फुल बूटे लहरा रहे ने, हवावां चलदियां ने, खुशबू जड़ी है उतारी हुंदी है, प्रसन्नता जागदी है। ते सतगुर कहिंदे ने भगत कबीर साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी कहिंदे मालन जड़ी है ये फुल तोड़ के लिया के ते पत्थर दे अगे भेटा करदी है। पत्थर जिहड़ा उहदे च कुछ रब नहीं हुंदा, पत्थर संबोलिक भावें हो गए लेकिन ज्यौंदी जागती चीज ते नहीं ना। और ये देखा गया कि आदमी जिदी पूजा करता है, जिदी आराधना करता है, जिसनों ध्यानदा है वह जी हो जाता है। जिदी असी पूजा करते हैं सानू गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जगदी जोत की पूजा करन दी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हदायत की है। सिख नूं हुक्म है कि इस जागत जोत, जागत जोत के विच ते पत्थर च बड़ा फर्क है। जड़ा ज्योंदी जागदी चीज की सेवा करेगा उसनूं ध्याएगा, वह खुद भी उहदा मन जड़ा वह जागना शुरू हो जाएगा, सोतियां बिरतियां भी जाग पैणगियां, ते जड़ा पत्थर दे नाल अपने मन नूं जोड़ेगा जाहिर वह भी पत्थर हो जाएगा। ते पत्थर दे नाल फुल्लां नूं मारिया जावे, कोमल चीज़ नूं मारिया जावे ते नुकसान जड़ा वह कोमलता का ज्यादा होंदा है, पत्थर का कोई नुकसान नहीं। जो पाहन को कहते देव सतगुरु की बाणी कहती है।

तोहे को सहस मूरत ननायक तोही सहस पद विमलन एक पद गंध बिन सहस तव गंधे चरत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा तरा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है।

हर प्रभ भा परहाओ जय जय देखा तय हर प्रभ सोए सब तेरे वास दूजा अवर न कोय जिसको तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरो मोहल्ला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हिरदे हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया जो सो गुरमत हिरदे हर नाम समार मधसूदन जपिए और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर काढ़े मार रहाओ जिनका हर सेती मन मानिया तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहता जी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूरत तां किश की जै जे किश होवे हर बाहर जो किश करे सोई भल होसी हर त्यावो अंदर नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे स्वामी ओह पूछना किसे करे बिचार नानक सो प्रभ सदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तहार भैरो मोहल्ला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जपिया गत होए हमारी तिनका दर्स देख मन बिगसै खिन खिन तिन को हो बलहारी हर हिरदे जप नाम मुरारी हर हिरदे जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास कीजे पनहारी रहाओ तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हिरदे वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी हर सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गै काडे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे ते नक काटे सिर जिन हारी हर आप बुलावे आपे बोले हर आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिले सो तुद मिलसी जन नानक क्या एह जंत विचारी भैरो मोहल्ला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम सरेवे नित चरणे जग जीवन हर त्याए तरणे अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाही जे वायत गणने रहाओ गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदे सुने गौर केरा सो जन पावे हर सुख कणे धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवणे भैरो मोहल्ला पांजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मासी भरम भूले नर करत कचरायण जन मरण ते रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मर रे साकत ढोर सगल पराद दे लरोनी सगल पराद दे लोरोनी सो मुख जलो जित कह ठाकर जोनी जन्म न मरे न आवे न जाए नानका प्रभ रहो समाए भैरो मोहल्ला पांजवा उठत सुखिया बैठत सुखिया भौ नहीं लाग है जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहा कहा प्रभ तू वरतंता कर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया भैरो मोहल्ला पांजवा वर्त न रहो न महरम दाना तैसे भी जो रखे निदाना एक गुसाई अल्लो मेरा हिंदू तुर्क दुहान बेरा रहाओ हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा एको सेवी अवर ना दूजा पूजा करो ना निवाज गुजारो एक निरंकार ले रे

मिल सखी सहेली हर गुण बने हर प्रसंग खिले वर कामन गुरमुख खोजत मन मने रहो मन मुखी दुहागन नाहे पियो ओ कट कट रावे सर्व प्रेयो गुरमुख तेर चीने संग दियो गुर नाम दड़ाया जप जपियो बिन गुर भगत न पाओ होए बिन गुर संत ना संग दे बिन गुर अंदले तंदर होए मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए गुरमन मारियो कर संजोग एहन सरावे भगत जोग गुर संत सवा दुख मिटे रोग जन नानक हर वर सहज जोग बसंत महला पहला आपे कुदरत करे साज सच बिसरस रे मन आप नवेड़े राज राज गुरमति उत्तम संग साथ हर नाम रसायन सहज आत मत विसरस रे मन राम बोल अपरंपर अगम्य गोचर गुरमुख हरियाप तलाई अतुल तोल रहाओ गुर चरण सरे वे गुर सिख तोर गुर सेवत रे तज मीर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव न पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठे पाइये हर मैल ठाओ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मिलावे करे तात गुर सिख प्यारी दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुक्का साहिब पावे सेवक सेव करे जीवत मरे सब कुल उधरे तेरी भगत ना छोड़ो क्या को हसे साच नाम मेरे हृदय वसे राव जैसे माया मोहे प्राणी गलत है तैसे संत जन राम नाम रवत है मैं मूर्ख मुग्ध ऊपर करो दया तो शरणागत रहो पया कहत नानक संसार किन्ने फल कामा गुर प्रसाद को पावे अमृत नामा महला पहला बसंत हिंडोल कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बिपूज मनावो सो किर तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो काची टैग दीवाल काहे का चलावो राव कर हर हट माल टिंड परोवो तिस पीतर मन जोवो अमृत सिंचो भर के आर तो माली कह हो वो काम करो दो करो बसोले गोडो धरती पाई ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो कीर्तना मेठिया जाई बगले ते फुनंसला होवे जे तू करें दयाला पणवत नानक दासन दासा दया करो दयाला बसंत महला पहला हिंडोल साहोरड़ी वा सबके सांझी पीव कड़े तन वखे आप कुछ अजी दोष न देउ जाना नाही रखे मेरे साहिबा हौ आपे परम पुलाणी अखर लिखे सही गावा अवरना जाना पानी रहो कड कसीदा पैरें चोली ता तुम जानो नारी जे कर रखें बुरा न चाकें होवें कंत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बीना दोए अखर दोए नावा पणवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा बसंत हिंडोल महला पहला राजा बालक नगरी काची दोस्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो विचारो
स्वामी पणता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ। पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूर दोए कर ही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया। राम रवंता जानी है एक माई भोग करे ताके लखन जानी है खिमा तन संग रहे। कहया सुने न खाया माने तेनी छेती वासा पणवत नानक दा संदासा खिन तोला खिन मासा बसंत हिंडोल महला पहला। साचा साओ गुरु सुखदाता आपे मेले भुख गवाए कर कृपा हर भगत दिड़ाए आन दिन हर गुण गाए। मत भूलै रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रैलोई गुरमुख पाई है नाम हरी रहाओ। बिन भगती नहीं सतगुर पाई है बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाई है कर मिलै हर नाम हरी। घट घट गुप्त उपाए वेख प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करें सोहर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना। जिनको तख्त मिले वड्याई गुरमुख से प्रदान किए पारस भेट पए से पारस नानक हर गुण संग थिए। बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मैं सद वसंत जित हरिया सब जी जंत क्या हो आखा किरम जंत तेरा किने न पाया आद अंत। तै साहेब की करें सेव परम सुख पावे आत्म देव राओ। कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे आंदिन साज नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे। बिक अमृत करतार्यो पाई संसार बिरख को दोय फल लाई आपे करता करे कराए जो तिस देवे तिसै खवाए। नानक जिसनु नदर करे अमृत नाम आपे दे बिख्या की वास न मने करे अपना पहना आप करे। बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला। तिस बिन और नाही मैं कोए ज्यो पावे त्यो राखै सोए। गुर गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे बिन सहज मिलो गुर मेल मिलाए रहाओ। ए मन लोभी लोभ लुपाना राम बिसार भोर पछताना बिशरत हाँ मैं रोग कठन तन पीरा। गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुरु गवाया। चार नदियां अगन तन चारे तृष्ण जलत जले अहंकारे गोरा केवड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत हारे। बसंत महला तीजा हर सेवा ते सो हर का लोग साथ सहज कदे न होवे सोग। मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे भी मर जाहे। से जन जीवे जिन हर मन माहे सास संभाले सास समाहे। रहाओ हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर। हर आपे जन लिए लाए तिन सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूके अवमान साची दरगाह पावे मान। हर जियो वेखे सद हजूर गुर कै शब्द रहा भरपूर। जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सद समाल। दर साचै पात्यों कर जाए नानक नाम वड्याई पाए। बसंत महला तीजा अंतर पूजा मन ते होए एको वेखे और न कोए। दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनू एक दिखाया। मेरा प्रभ मौलिया सद वसंत ये मन मौलिया गाए गुण गोबिंद रहाओ। गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार। आप छोड़ होए दास तपाई तो जग जीवन वसे मन आए। भगत करे सद वेखे हजूर मेरा प्रभ सद रहा भरपूर।
इस भगती का कोई जाने पियो सब मेरा प्रभ आत्म देओ आपे सतगुर मेल मिलाए जग जीवन सिओ आप चित लाए मन तन हरिया सहज सपाए नानक नाम रते रहे लिवलाए बसंत महला तीजा भगत वछल हर वसै मन आए गुर कृपा ते सहज सपाए भगत करे विचो आप खोए तद ही सच मिलावा होए भगत सोए सदा हर प्रभ द्वार गुर कहे सच प्रेम प्यार हाओ भगत करे सो जन निर्मल होए गुर शब्द विचो हों मैं खोए हर जीव आप वसै मन आए सदा शांत सुख सह समाए साचर ते तिन सद वसंत मन तन हरिया रव गुण गोबिंद बिना वैसु का संसार अगन तृष्णा जले वारो वार सोई करे जिहर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ से वैसे सुपाई नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाई सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सह सुपाए सच फल लागे सतगुरु भाई रहाओ आपे नेड़ै आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शावकनी फोली बन राए गुरमुख विग सह सह सुपाए आन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचो झूठ प्रांत पर पंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाईए नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किश करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे ये को चेता फिर जो न आवे सफर जन्म ए जग में आया साच नाम सहज समाया गुरमुखार करो लेवलाए हर नाम सेवे विचो आप गवाए रहाओ ते जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चौ जुग पसरी साची सोए नाम मरता जन प्रगट होए एक साचे शब्द रहे लिवलाए से जन साचे साचे पाए साच तिहाइन देख हजूर संत जना की पग पंकज तूर एको करता अवर न कोए गुर शब्दी मेला वा होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करे जन देख हजूर संत जना की पग पंकज तूर हर सेती सद रह लिवलाए पूरे सतगुर दिया बजाए दास आका दास विरला कोई होए उत्तम पद भी पावे कोई रहाओ एको सेवो अवरना कोए जिस सेविया सदा सुखोए ना ओ मरे न आवै जाए तिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिन साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया ते सर तू जान साच शब्द प्रभ एक सयान हर रा चाखे ता सुदोए नानक नाम वरते सच सोए बसंत महला तीजा नामरते कुलना का करे उधार साची बाणी नाम प्यार मनमुख पूले काए आए नामो पूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन निवारे गुर कै शब्द साच उरता।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकर तुम पे अरदास जीव पिंड सब तेरी रास।

सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। शलोक देन हार पर छोड़ के लागे अन सुहाए नानक कहू न सी जय बिन नावे पत जाए अस्पदी दस पस्तूले पाछे पावे एक वस्त कान विखोड़ गुआवे एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर सो नाए चारा ताको कीजे सद नमस्कारम।

जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा ना करे जगदीश। जियो पिंड सब तस्की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बंत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाए इसका बल नए साथ कर्ण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी वपरा जियो जो तिस भावे सोई पुन थियो कबू ऊंच नीच में बसे कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद चंद व्यवहार कबू वकास प्यार कबू मिता ब्रह्म विचार।

ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रगट सतगुरमान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया।

जोवन बंध सोवत विष्टा का जंत आपस को कर्म बंध का आवे जन्म मेरे भोजन परमावे धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय करीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे तनवंता हुए कर करवावे तृण समान किस संग न जावे।

संत का नंदक परमेश्वर मारा संत का नंदक राजतेहीन संत का नंदक दुखियार दीन संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सब जो संत की निंदा दोख में दोख नानन संत पावे ता उसका भी होय मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे कानी मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत की दुख न सुखते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानन संत पावे ता ले मिलाये संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी अब जल पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किसना है आप।

ज्यों मंदर को थामे थमण त्यों गुरका शब्द मने इस थमण ज्यों पाखाण नाव चढ़ते रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुरदर्शन देख मन होए विकास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रटावे तिन संतन की बादशो तूर नानक की हर लुच्चा पूर मन मूर काय बिल्लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभदेव नहार त्याग तुम तिजे चितार जोगिश करे सोई सुखमान भूला काय फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जबिर दे माए नानक पसे ती कर जाए जिस वखर को लैन तुम आया राम नाम संतन कर पाया था जब मान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल

मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र भोर तिसदा तिसका मंत्र ना जाने होर। अन रूप मंगल सजा के सर्व थोक सुनिया करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तबीसर किस में भोगी।

जन का सेवक सो बड़भागी जन के संगे एकलिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है बे सच नानक होसी पै सच आशपदे चन सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ते हवन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शाब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत सब होए नानन सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रटाया भय ते निरपो होए बसाना जिसते उपजा तिस माय समाना बस्त माय लय बस्त कटाए ताको भिन्न कहना जय बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेव सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जे दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप पात्र रखे ताकि गत में कोई न लखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रटाया नीकी केरी में कल रखे भस्म करे लश्कर को लखे जिसका सास न काटते आप तक रख दे कर हाथ मानस जतन करतब पात तिसके करतब मिर्थे जात मारे ना रखे अब न को हे सब्जी आका रखा सो हे काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबल खुरानी बारम बार बार प्रभ जपी है पी अमृते मंत्र पी है

की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर सदा पूर सदा प्रभु के गुण गावो सास प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नतनीत

बोलण बोलिया जो सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक वै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सो कर ले जाए गुरमुख ना डंग गुरमुख वेदंग गुरमुख

गावसे सुमति अंदर गावन साधु विचारे गावन जति सती संतोखी गावा वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर दुग दुग वेदा नाले गावा मोनिया मनमोहन स

अनंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाल विनोद कोड आनंद शर्म खंड के बाणी रूप तिथे काट कड़िया बहुत अनूप ताकि अगला कथिया न जाहे जेको कह पिछे पछताए तिथे कड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िया सुरा सदा की सद कर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहा परपूर।

प्रसाद आद नूप अनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मन त्रिमान देव भेव आद उदार सर्व पारक सर्व काल सर्व कोपन काल जतर तत्र विराजी अवधूत रूप साल

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चतर चक्र बासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाची छंद ना सतरे ना मित्रे ना परम ना पितरे ना कर्म ना काये अजन्म जाए ना चित्रे ना मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधि से अधि से अकिर से भक्ति छंद वाय प्रसाद के शे के शे त्वाय प्रसाद कथते के शे के बिज पेसे के अगंज कर्मे के बंज परमे के बिज लोके के अदित सोके के अवधूत बरने के विभूत करने के राजम प्रवाह है के तर्म तुजा है के अशोक बरने के सर्वा भरने के जगतं कृति है के शत्रन क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपो अनुपे के आद देव है के आप अपेव के चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रही मेरा हक के पाक भी है वह के गह भूल गह के अबुल गुना है के शान शाह के कारण को निंद है के रोजी दहन है के राज करही मैं के कर्म करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दिन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है इसे प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कली में के परम पही में के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमावल रजू है हमें सलसलामे सलीखत मदामे गनी मुल शिखिस्ते गरीबल परस्ते

राजन मुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, परभुक्त प्रवाह है, सुरजुक्त सुधा है, देव स्वरूप है, भेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सब साज है, समस्त सलाम है, सेव काम है, निवाद स्वरूप है, गाद अनूप है, ओ अंगाद रूपे नाद स्वरूपे नंगी नाम त्रिभंगी त्रिकाम है, त्रिवंगी त्रिकामे।

है भुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद

नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश अगंजल नाम समस्तल निवास निरकाम विभूते समस्तल स्वरूप कर्म प्रणाशी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद सतरम प्रणाशी क्री मलकुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वम स्वं सर्वदा सर्वयुक्ते दया दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे पंगं विभूते

दे मोहि बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेव सिख सबे करतारा मोर अछान कर दे करिये सब हरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा दुर्भन की रे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाऊं सो तुम ते पाऊं सेव सिख हमारे तारी है।

दुष्ट पाता सकल मलेश करो घाता जे दसणी परे तिनके दुष्ट दुख वह मरे पुरख जीवन परे त्यारे तिनके तम संकट सब डारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकने है रचावे दाय सकल दुष्ट इष्ट काला कृपा दिश तन जान हरे हो ताके ताप तन मोहरे और सिद्ध कर्मो सब हो दुशाश हो सकन कोई

तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सुवारना सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मन सारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहन नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे।

प्यास ना जाए, प्यास न जाए, और किते चर हरस पले ना पाए, हरस पाए पले पिए, हरस बोहड़ ना तृष्णा लागे आए, हो हरस कर्मी पाई है, सतगुर मिले जिस आए, कहे नानक होर।

हार जोत रखी तुदवे तातु जग में आया रापे माता आपे पिता जन जीव पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया तो चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नान सिष्ट का मूर रचिया जोत रख।

पौड़ी आप पीने आप साजियो आप पीने रचियो ना हो दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तो दोस्त देव करे पसाओ तू जानो ही सब सह दे ले से दिल कवाओ कर आसन डिठो चाओ आसन डिठो चाओ।

0: धरती विश्वात खाणी विश्वास सत लग प्राणी स्वास जोग स्वात विजोग स्वात स्वात भोग स्वास विश्वास ला स्वात उजड़ विस्मात रहा
1: विस्मात नेड़े विस्मात दूर विस्मात देखे हाजरा हजूर वेख बिना रहया विस्मात नानक पूजन पूरे पहाड़ महला पहला

0: ओडरावा चाटे पाए वेखे लोग हसे घर जाए रोटियां कानपुर तालाब साड़े धरती नाव गावन कोपिया गावन कान गावन चीता राजे राम निरपाओ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान
1: सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना बंद चाओ।

और बिन सतगुरु के न पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे कर प्रकट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है, दिन विचों मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन

करुंजना कदुत पाया था तिनी कसम त्याया। हे न जनता के वस किछ नाही तुदवे की जगत को पाया। एक नानु तू मेलाय का पहुतुत खोआया। गुर कृपा ते जाणिया जिथाय तुद आप बुझाया।

0: आहे सजुर संतो का धर्म कृत्वा हो त्रि तेरा जते का जोर कृत्वा हो
1: वाह
0: तप रत सत सत का द्वार पर तप का सत कृत्वा हो काल जुगरत गिन का कूड़ कृत्वा हो महला पहला
2: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब कुछ सच समावे री कह रहे हैं पर भूर राम नाम देवा में सू नायले प्रासि जाय नानक तो मुख अंतर पाहे जज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जातुम पहाव।

हे पातशाह मेहर कर साडे ते, तेरे दर ते टै पए आ टै, मेल लहो दयाल टह पए द्वारे। सच्चे पातशाह तेरे दर ते टै पए, सानू अपने नाल मिला लै, साडे ते मेहर कर दे वाहिगुरू, साडे ते बख्शिश कर दे। दसवें पातशाह दे दरबार विच इक मुसलमान काजी आ गया। सत्संगीओ, सलार दीन दा जिक्र मिलदा। इन्हें मन दे शंका कीता बैठे बैठे ने कि संगत आउंदी है, लोग आउंदे ने, आके मत्था टेकदे है, गुरु कोलों सुखना मंगदे ने, कोई दुध मंगदा, कोई पुत मंगदा, कोई सुख मंगदा। शंका मन च यह आया, उस काजी दे विद्वान सी ओ, शंका दे मन च आ गया बैठे बैठे दे, जे गुरु जी इन्हां दीआं इच्छा पूरियां करदे ने, फिर अल्लाह ताला दे वाहिगुरु दे परमात्मा दे भाणे च फर्क पैंदा। परमात्मा किसी के कर्मा अनुसार उन्होंने दुख दे रहे हैं, तो गुरु उन्होंने दुखा सुखा च बदल देवे, ये रजा विच फर्क है। जे गुरु इन्हों का स्वार का कुछ नहीं, तो फिर गुरु जी दे कोल आउण दा की लाभ है। अंतरजामी गुरु कलगीधर जी ने जान लिया, गुरु जी ने एक मोहर दिती काजी नूं, मोहर स्टैंप, कहिंदे काजी इहदे अखर पढ़, अखर पुठे होंदे, आपां नूं पता जिहड़ी मोहर उहदे अखर पुठे होंदे ने। कहिंदा महाराज पढ़े नहीं जा रहे, क्यों? कहिंदा अखर पुठे दे। सच्चे पातशाह ने शाही लाई, कागज उत्ते लाती मोर, कहिंदे हुण पढ़ पढ़ ली। कहिंदे कोई समझ लगी? कहिंदे नहीं। कहिंदे जदों कोई गुरु का प्यारा सिख सरदालू, कोई भी प्या प्रेमी आउंदा, शरदा की शाही ला के मत्थे ते, शरदा की ते गुरु चरणा चा के मत्था टेकदा ना, शरदा नाल प्यार नाल थले धरती ते मत्था ला के, ते पुठे लेख सीधे हो जाते ने। प्यार ना बोलो सतनाम वाहिगुरु। दुख लिखिया करमा सुख हो जाएगा। सत्संगीओ, दुध पुत मंगदा गुरु का सिख दात मिलेगी। तो जे प्यारे मोहर आपां कागज उत्ते लाईए ना, वेख्या ना जो मोहर लाई दी, इहनूं नप के लाई दा, चंगी तरह नप के थले लग जाए, इदां जिहड़ा मत्था अपना धरती ते चंगी तरह ला के सच्चे पातशाह जी चरणा च, संगतां दी धूड़ मत्थे ते लगे ते भाग जाग पैंदे प्यारिओ। साध की धूड़ कट्टे अग कोट, गुरु जी कहिंदे आयो सरण दीन दुख भंजन। हे दुखां नूं भन्नण वाले वाहिगुरु, दीना नमाणिया दे उते तरस करन वाले वाहिगुरु, मैं तुहाडी सरण च आया हाँ। चितवो तुमरी ओर, हे वाहिगुरु मैं तुहाडे वल, तुमरी ओर दा तुहाडे वल, चितवो दा पाव चितवदा हाँ, तुहाडे वल वेखदा हाँ, तुहानू याद करदा हाँ, मैं तुहाडी सच्चे पातशाह सरण आ गया। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, गुरु दे प्यार वाले गुरबाणी की संथ्या बच्चे नूं दिंदे ने। यह दम दमन टकसाल का प्रमुख मनोरथ है कि जिथे भी गुरु का सिंह, टकसाल का सिंह ग्रंथी की सेवा करता जां कीर्तन की सेवा करता, ते नाल नाल बच्चियां नूं शुद्ध बाणी पढ़ाउण दे वास्ते भी प्रेरदा, तो बेनती करते जिथे भी ये शब्द आ जाए ऐड़ा तो पब्बे दलावा, उत्थे पाठ करना अपै, अभे नहीं। अपै का अर्थ हुंदा जिहड़ा डर तो रहत, भै हुंदा अखर भय, तो अगेत्र लग गया अपै, जिहड़ा डर तो रहत। जाप साहिब पढ़िया करो, जाप साहिब की बाणी बहुत आनंदमई, तो एक रस ते लय विच बाणी पढ़न वाली प्यारिओ। ये 1100 वार परमात्मा अगे नमस्कार की गई है। अपन गुरु चरणा चाह रहे हैं, एक बार मत्था टेकांगे, दो वार टेक लाँगे, चार वार टेक लाँगे, फिर सोची दा हुणे मैं आया सी, फिर उदा ही आपां आए ने कई बार। तो जाप साहिब की बाणी पढ़ोंगे 1100 वार परमात्मा अगे नमस्कार है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। तो आप ये पढ़ते चाचरी छंद, अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, ये सारे वाहिगुरु के नाम ने। अरूप का अर्थ रूप तो रहता, रूप हों ऐड़ा गेत्र लग गया आरूप, जिदा रूप ही कोई नहीं, अरूप है, अनूप है, उपमा तो रहता। इसलिए जोड़ा पाठ है ऐड़ा, इन थोड़ा जहा वखरा करके पढ़ा, अभै अभै पाठ नहीं करना, अभै है अभै है। हाँ, किते किते आउंदा अबे तबे की चाकरी, उत्थे आउंदा ऐड़ा बब्बे लां, अबे उत्थे बब्बे लां है। जिथे भी पब्बे दलावां आ जाण, उस तों पहला ऐड़ा जे, वह पाठ अपै है।

नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाज ने आप सवारी से कुन को सौगुन सो दियो शतरन को फल मोहद कियो कट कट गए अंदर की जांद भले बरे की पीर पिछान चीटी ते कुन चरस थूला सब पर कृपा दिशा फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट गए पटपट की जाने जबत कर करा करता रा प्रजा धरता दे अपारा जब कर कर तो कबो तुम मैं मिल दे तर सब हूं जेते बदन से सब तारे आप अपनी बुझे चारे तुम सभी तेरे तन आलम जानत भेद भेद आर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब

लाए चित सन मुख रहो कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो सो कहो टल गुर से भी है एहनस सहज सुपाए दर्शन परसे आए गुरु कै।

हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सा बास जियो भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल में लावे।